पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

होता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The Asian Station for Greater London. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
1: Sunrise Radio.
2: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for three generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
3: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
2: Khanam Ghee, the legacy lives on.
0: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
4: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर.
5: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty, and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: Look at you. The future is unpredictable at times. But the Open University are the experts in online learning. Allow-

0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. Shabnam Sahi on Sunrise with Maharani on Sony TV. The gripping political Sony Live series that had millions hooked is finally on Sony TV. Starring Huma Qureshi in most powerful role yet. Watch Maharani tonight 9 PM on Sony TV. Travel Hub, your safari specialist. Explore Masai Mara and the wildlife.
2: Visit Zanzibar, enjoy breathtaking holidays to Maldives, Mauritius, Bali or Sri Lanka.
1: At low, low prices. Visit travelhubworld.com or call 0208-782-8833. At all protected.
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
2: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
3: वसीम ज्वेलर्स।

0: हमारा बर्थडे था, आज तो हम गा कर रहेंगे, इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत लोग सो रहे हैं. Because they were up until 4 AM, right?
1: जश्न मनावण दे सजन मैनू.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,